0: माँ क्या कहती थी?
1: कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर बलैया लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए।
0: जानते हैं बाबूजी, श्याम सांवरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे।
1: क्या?

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो भूखती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।